0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777
0: दिस इज सनराइज हिट्स The UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथ स्टेशन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए. यूके के स्मूथ स्टेशन हिट्स, सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: This is the UK's This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही advertise कीजिए UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits sales team को 020-8574-7777 पर कॉल कीजिए. Sunrise Hits पर आज ही advertise कीजिए UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits sales team को 020-8574-7777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट।

0: Hits Sunrise Hits Sales Team को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
1: This is the UK's smoothest Asian Hits Sunrise Hits.

0: सनराइज हिट्स, सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथ स्टेशन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर। एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथ स्टेशन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 020-8574-7777।
1: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज सनराइज हिट्स द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स

0: सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777.
1: सनराइज हिट्स.

Artist of the Week with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: सनराइज हिट्स, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no फी.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद. ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं.
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ. विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे.
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स.

आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: दिस इज द UK's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिला है और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके'स स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। बैक टू बैक सॉन्ग्स ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू दुबई, द फार ईस्ट एंड द USA। डिस्कवर वर्ल्ड वाइड हॉलीडेज एट साउथोल ट्रैवल.co.uk।

हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पफ चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: सनराइज हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा नमकीन मैंगो पल्प चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: दिस इज द UK's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, दिस इज सनराइज हिट्स। Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम इन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम इन खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम इन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो पॉप, चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: दिस इज द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। दिस इज सनराइज हिट्स।

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आगमन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेम इन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम इन खाकरा नमकीन मैंगो पल्प चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम इन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज द यूके's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स। बैक टू बैक सॉन्ग्स ब्रॉट टू यू बाय साउथल ट्रैवल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू दुबई द फार ईस्ट एंड द यूएसए। डिस्कवर वर्ल्ड वाइड हॉलीडेज एट साउथल ट्रैवल.co.uk।

आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो पॉप, चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: सनराइज हिट्स, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: Pepe's sizzling song of the hour. Order a Pepe's this month and you could win tech vouchers on the spot. Plus, you're automatically entered into a grand prize gaming bundle draw. Flame grill flavor with a side of winning. Pepe's, T's and C's apply. This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स।

आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो पॉप, चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स।

0: Pepe's sizzling song of the hour. Hey, did you know Pepe's has launched merch? So many items to order. Check it out. merch.pepes.co.uk. This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits. Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Cashback Remortgages. West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no fee.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिला है और चटपटा मजा विद जेमिन खाकरा नमकीन मैंगो पल्प चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020-8574-7777.
0: Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज द UK's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। दिस इज सनराइज हिट्स। Back to back songs brought to you by Southall Travel, from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर

0: सनराइज हिट्स।
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद। ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020-8574-7777.
0: Sunrise Hits. The UK's smoothest Asian hits. Back-to-back songs brought to you by Southall Travel. From India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो पॉप, चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। दिस इज सनराइज हिट्स।

0: Pepe's sizzling song of the hour. Order a Pepe's this month and you could win tech vouchers on the spot. Plus, you're automatically entered into a grand prize gaming bundle draw. Flame grill flavor with a side of winning. Pepe's. T's and C's apply. Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन भर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम इन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम इन खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम इन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो पॉप, चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: artist of the week with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
1: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: Pepe's sizzling song of the hour. Hey, did you know Pepe's has launched merch? So many items to order. Check it out. merch.pepes.co.uk. This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no फी.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद. ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं.
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ. विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे.
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स.

0: Pepe's sizzling song of the hour. Find your flavour at Pepe's. With over 260 stores nationwide, we're closer than you think. Fresh flame-grilled chicken with a choice of six delicious marinades. Simply Pepe-licious. This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन भर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: सनराइज हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए। एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777।
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर। सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: सनराइज हिट्स,
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए। सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथ स्टेशन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथ स्टेशन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: सनराइज हिट्स।

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स